माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कूल योगा राजा को मैं ही सिखाता हूं।